दे संग न चाल तेरे तना। ए जीव, ए तन, ए माया, दौलत तेरे नाल नहीं जानी, इन्हें तेरा साथ नहीं देना। सह पंचम पातशाह फरमान करदे ने संग ना चालस तेरे तना, तू क्या लपटावे मूर्ख मन। ए मूर्ख मन, क्यों तू माया दे विच उरजिया वे, क्यों मोह माया दे जंजाल विच पै गए, अपनी सलीयत नू भुली बैठा है, माया ने ते तेरे नाल ही नहीं जाना। संग न चालस तेरे तना, लेंदा पद दुआए तू माया करे अकत। क्यों बस हिस्सा ले, बद दुआ लेके माया नू अकत्र कर रहे, माया कठी ना कर। ए ठीक है के माया तो बगैर गुजारा नहीं, निर्दन आदर कोई ना दे, लाख जतन करे कितना तरे, निर्दन नू कोई आदर भी नहीं देंदा, माया तो बिना गुजारा नहीं। पर सैम आख दे ने जीव माया भी ओनी होवे जो तेनू परमेश्वर दा ना ना भुला दे, तेनू वाहिगुरु भुल ना जावे। माया भी ओनी कोई चाहिए गुजरायन जोगी। सैम फरमान कर दे ने लैंदा बद दुआए तू माया करे अकत। जिस माया नू तू अकत्र कर रहे, उस माया तेरे नाल नहीं जाना। संग न चालस तेरे तना, तू क्या लपटावे मूर्ख मना। इस जुग में सोबा नाम की, पर इंसान दे मन अंदर गलत फहमी पैदा होगी। कहिंदा है माया दे नाल ही सब कुछ है, जी माया ते जहान है, जी माया ते साख संबंधी ने, जी माया ते रिश्तेदार ने, जी माया ने ते धियां पुत्र ने, नहीं ते माया तो बिना कौन किसे नू कुछ समझदा है, माया तो बिना कदर ही नहीं। पर सैं फुरमान कर देने जीव ना, इस जुग

हम बन बन जाओ और मैया कारण कारण कमल अबोल रहा बहुत जन्म बिछड़े थे माधो जो जन्म तुम्हारे लेके चरदास आसला।

जिस घर दे विच चार भरा इकट्ठे होके नहीं बैठ सकते वह घर कदे भी आबाद नहीं हो सकता। अज इत्थे देखना करिए गुरमताशे मुताबक सिक्खी वाल देखना करिए, सिक्खी दे पता नहीं कितने धड़े बन गए ने, पता नहीं कितनिया जातां विच वंड दिता है सिक्खी नूं। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जिन्हां ने सीस पांच प्यारियां तो पांच ले पर अमृत एक बख्शिया सी, वो कारण की सी? अमृत एक बख्शिया उसका कारण की सी कि मेरा खालसा जात पात तो मुक्त हो जाए। अज खालसा देहधारियां पखंडियां तो छुटकारा पवा सके, जिमें कि अज आम ही देखन चाहता है यह गुरुद्वारा रामगढ़िया का है, यह गुरुद्वारा शिंबिया का है, यह गुरुद्वारा भापिया का है, मतलब कि सिक्खी नूं असीं पता नहीं कितने धड़ियां दे विच वंड दिता है। सतगुरु बड़ा सुंदर उच्चारण करते हैं सिक्खी नूं धड़ियां विच वंडण वालियां।

अरदास पिछे जे संगतां दा हुक्म होया एक शहर विखे गुरु अर्जन साहिब जी दे शहीदी गुरपुरब ते गया। तीन दिन दीवान सजदे रहे। वापसी वाले दिन दास ने अचानक उत्थों दे जनरल सकत्तर नूं एक प्रश्न किया कि भाई साहब जी की तुसीं इस गुरद्वारा साहब विखे भगत रविदास जी का गुरपुरब नहीं मना रहे? तां उन्होंने जवाब दिता कि नहीं। दास ने कारण पूछया तां उन्हें कारण दस्या कि वह जन्म दिहाड़ा भगत रविदासियां दे गुरद्वारे विखे मनाया जाता है। दास नूं बड़ा अफसोस होया इस गल सुन के। जो असली जवाब सी सैकटरी साहब नूं इह देना चाहीदा सी कि जेकर भापियां दे गुरद्वारे विखे रविदास जी का जन्म दिहाड़ा मनाया भी गया तां लोकी किधरे इह ना समझण लग पैण कि इह गुरद्वारा रविदासियां दा है। इस वास्ते पापियां दी पहचान खत्म हो जाएगी। अते फिर अफसोस होया उन्हां अंध ज्ञानियां दे उपर जो कि अपने आप नूं रविदासियां कहलाउंदे हन। उन्हां ने अपने गुरद्वारा ही वखरा बनाया होया है। उन्हां नूं शायद यह नहीं पता कि भगतां गुरुआं जां पीरां दी बोली विच चमार उस नूं नहीं कहा जांदा जो जुत्तियां गंढदा है। चमार उस नूं कहा जांदा है जो मनुखता इंसानियत नूं जात पात दे विच गंढदा है, इंसानियत दे टुकड़े करदा है। आ कबीर जी बड़ा सुंदर उच्चारण करते हैं

आओ अज असीं अपने घर नूं देखना करिए। अज किसे गुरमुख नूं पुछ लिया जाए, भाई साहब जी तुसीं अमृत कित्थों छके आए, तां आम ही आवाज आउंदी है कि मैं बिबेकिया तों छके आए। कोई कहिंदा मैं टकसालियां तों छके आए, कोई कहिंदा मैं अकालियां तों छके आए। हालांकि सारे दलों के विच ही पंज प्यारे अमृत छकाउंदे हन, ते कलगीधर पातशाह जी का हुक्म ही उस दिन ही कलगीधर पातशाह जी ने हुक्म कर दिता सी, जिस दिन पांच प्यारे साज के अमर तैयार किया सी, अते सरबत कौम नू पांच प्यारे नू गुरु बना के वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुरचेला वाला खिताब दिता सी पांच प्यारे नू। पर अज सिखी बहुत ज्यादा भटक चुकी है। अज संसार नू हो पता नहीं की गया, घर घर दे विच अग लगी हुई है, भयानक ज्वाला भटक रही है। भरा नू भरा नहीं देखना चाहता। दो मिनट वास्ते असी सिखी दायरे तो बाहर जाइए। दास दा कहण तो भाव बाबरी मस्जिद अते राम जन्म भूमि बारे है। जिस वक्त यह भयानक युद्ध चल रहा सी, तां दास ने एक विचार आया मन दे विच कि शायद इस जदोजहद जां युद्ध दे विच गुरु नानक पातशाह कदरिया भी जाते, तो गुरु नानक पातशाह ने हिंदू और मुसलमान नूं उपदेश पता की देना सी। क्या हिंदुओ, मुसलमाना की मस्जिद वरान ना करियो, क्योंकि इस दे विच भी उही राम वसदा है जिसनू तुसी मानदे हो, उस दे विच भी उही अल्लाह ताला वसदा है।

केवन के नहीं निवल भयंगम साधे मोहे दीन हर हर आराधे तेरा भरोसा प्यारे आन न जाना वैसा कि नहीं ग्रह तजवन खंड पाया कि नहीं मोन अवधूत सदाया कोई कह तो अनन भगवती मोहे दीन हर हर ओट लीती।

हे मेरे मालिक, इस संसार विच कौन ऐसा व्यक्ति है जेड़ा तेरी आस तो बिना जी रहे है। तेरे दर करते सब ने आस लाई हुई है। किसलिए? क्योंकि आप सब दियां आसां पूरियां कर दे हो। जेड़ा भी इस दर ते आस लैके आंदा है उदी आस पूरी हुंदी है। ऐवें नहीं कोई इत्थे आंदा, हर किसी दे मन दी कोई ना कोई आस जरूर है, पर शायद आस उत्थे कीती जांदी है जिथे पूरी हुंदी हो। ते जिथे कोई पूरी ना करे उत्थे कोई आस नहीं रखदा। सानू आप ते आस है, ए गल वखरी है, आस भी कई प्रकार दी है। एक गल का ख्याल रखना, आस पक्की होवे कच्ची ना होवे। कर आसा आए

कर आसा। आयो प्रभ मांगण, मैं बड़ी आस करके हे मेरे मालिक तेरे दर तो मंगण आया। कहिंदे ने मंगया फरीद ने भी, बाबा फरीद ने मंगया आस लाई। लिखो हुण आस कैसी है, साडे कलजुगी जीवां दी तरह नहीं, साडी आस ते बहुत कच्ची है। दो चार वर्षी गुरु घर आउने आ, आस पूरी हो जाए ते ठीक है, पंजवें दिन गुरुद्वारे ही नहीं वड़दे, साडी आस ही नहीं पूरी हुई। नहीं भाई, इस दर ते ते हर किसी दी आस पूरी हुंदी है। हां ये गल जरूर होई है कि जिस वेले आस पूरी होनी सी उस दिन तू आया ही नहीं, उस दिन तू दर छड़ के ही चला गया। इत्थे ते रोज आ, रोज हाजरी पर, पता नहीं किस वेले अरदास मंजूर हो जानी है। आस पक्की रख के बह, ए ना सोच के पूरी नहीं होई, जरूर होवेगी। हुण बाबे फरीद दे किसे आस लाउणी है,

हे मालिक मैं ए आस ला के बैठा हे प्रभु मैनू कदो गल ना लावेगा, मैं ते इस आस विच बैठा वा हे प्रभु मैनू कदो गल ना लावेगा। हुण ए आस ते पूरी ताई हो सकदी है कि मनुख पक्की आस रखे, कच्ची ना हो, इतनी पक्की आस।

थल कहां, गगन के गौन कहां, काल के बनाए सब काल ही चबाए हैं। कलगीधर पाछा काल दी गति अगाध कथन करते हैं। दशमेश पिता जी आनंदपुर साहब ते ऊने साहब दे विचकार जो बंभौर साहब गुरुद्वारा है सतलुज दे ऊपर, उथे बैठ के काल दा कौतक वेख के ए बाणी रची। आपने की तकिया कि मिर्ग आया है पानी पीण लई, ज्यों पानी पीण लगदा तां इसते मुख विच मच्छी फस जांदी है। दम रुक गया, ऊपर बाज वेख रहा सी, उड़ रहा बाज ते वेख रहा कि मिर्ग दे मुख विच मच्छी फस गई। ते ज्यों इस मच्छी नू चपट मारन लई बाज आया तां ओ भी मिर्ग दे सिंगां विच फस के शरीर छड़ गया। अख फुरत विच ए तीन मौतां वेख के, ए काल दा नजारा वेख के साहब कलगीधर पातशाह कहंदे ने जल कहां, डूंगे जल विच रहण वाली मच्छी किथे, किवें काल ने सद लिया किनारे ते, आ जा भाई तेरा समा आ गया। थल कहां, तेज रफ्तार थलां ते दौड़न वाला, जमीन ते दौड़न वाला मिर्ग किथे, मौत ने बुला लिया। उच्चियां आकाशां विच उडारियां मारन वाला बाज किथे, मौत ने बुला लिया, आ जा भाई। ते अख फुरत विच तीन मौतां वेख के धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी कहंदे हन कि जल कहां थल कहां, गगन के गौन कहां, काल के बनाए सब काल ही जबाए हैं। कबीर जी ने बड़ा सुंदर ख्याल लिखा है कि कबीर एक मरनते दोए मुए, दोए मरनते चार, चार मरनते शै मुए, चार पुरख दोए नार। कबीर जी कथन करते हैं कि एक हरनी दे मरने ते नाल उसका बच्चा भी मर गया, इसलिए दो ओ मर गए। दोहां दे मरने नाल दो होर मर गए, क्योंकि शिकारी ने जाके शिफ्ट बनी है मिर्ग दी। जो निशाना मारिया मिर्गनी नू, ता मिर्गनी हरनी भी मर गई, ते जेड़ा इसके बच्चा होन वाला सी, क्योंकि गर्भवती सी, बच्चा भी मर गया। हुण जिथे बैठ के इसने निशाना बनिया सी, उथे नेड़े ही सप निकलिया, जिसने शिकारी नू दस्या, शिकारी नू दस्या, ते शिकारी ने झट तलवार कढ़ के सप दी भी उथे ही मित कर दिता, ते आप भी उसे वेले शरीर छड़ गया। तां कबीर जी कहंदे हन दोए मरन ते चार, हुण चार हो गए, इना चौवां दे मरने ते दो होर मर गए। शिकारी दी घर वाली जो गर्भवती सी, उसने जदों वेख्या मेरा पति गुजर गया है, हुण मेरा जीवन त्रिग है, वो भी उथे ही टकरा मार मार के आप मर गई। क्योंकि कबीर जी ये सब कुछ अखी वेख रहे सन। ए शे दी गिनती कीती है बाणी दे विच, मिर्गनी दा बच्चा, शिकारी, शर्प, अहेड़न ते पेट दा बच्चा, ए चारे पुरख हन, शिकारी दे घर वाली ते हरनी दे दो, ए दो औरतां हो गईयां। इस दी साखी इस तरह है कि जिस वेले शिकारी अपने घर विचों निकल के बाहर शिकार खेडन गया, ता अगों ही एक गर्भ वाली हरनी मिल गई, ते इस वेले शिकारी ने खिंच के निशाना चलाया, उसी वेले हरनी मर गई, नाल ही उसका बच्चा मर गया। इतने नू जिथे फंदक खड़ोता सी ना, उस जगह तो सप निकलिया, सप ने डंग मारिया, ते शिकारी ने झट तलवार मार के
ਸੱਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਚੜਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਫੰਦਕ ਦੀ ਔਰਤ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਪਤੀ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਗ ਕਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਗਰਭ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਭਾਵ ਇਸ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਔਰਤ ਦੇ ਮਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੀ ਨਾਲ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕਾਲ ਦੀ ਗਤੀ ਅਗਾਧ ਕਥਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਲ ਨੇ ਤਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਕਈ ਮੇਟ ਡਾਰੇ ਉਸ਼ਾਰੇ ਬਣਾਏ, ਉਪਾਰੇ ਗੜੇ ਫੇਰ ਮੇਟੇ ਉਪਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂ ਮਰੇਂਗੇ।

कैसा मरना होए। जेकर साहब मनो ना विसरे तो सहला मरना होए। हजूर कहंदे मरना सच है, जीवना झूठ है। ए मनुख मरने नाल तां जगत डरदा है, गुरमुखां नूं कहदा भई डर है। कबीर जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद मरने ही ते पाईए पूर्ण परमानंद। जिन्ना ने आके श्वास श्वास भजन कीता है, सिमरन कीता है, वो ता बाजी जीती बैठे हन, वो ता पुग चुके हन, वो ता जीवन मुक्त हन, उन्हां नूं मरने तो डर नहीं। गुरु अमरदास पातशाह कहंदे हन, जिहड़ा हुक्म बुझ गया है गुरु दा, संसार ते आउण दा जिन्हूं पता लग गया है भई मैं क्यों आया, ते फिर उसने सेवा सिमरन परपकारी जीवन बिता दिता है। गुर प्रसादी जीवत मरे, हुक्म है बूझे सोए, नानक ऐसी मरनी जो मरे ता सद जीवन होए। वो सदा जीवदे हन जेड़े गुरु दे हुक्म विच निर्मल पाओ विच अपना जीवन बतीत करदे हन। भाई साहब नंद लाल जी कहंदे हन कि गुरमुख हमेशा जीते हैं, मरते कभी नहीं वो, जिनकी जबां पे हर दम सतनाम वाहिगुरु है। जो हर वेले ईश्वर भगती विच जुड़े हुए हन, जो हर वेले अपने मालक दे चरणा विच जुड़ के जपदे हन श्री वाहिगुरु, फिर भाई

मर जाए लोग आजान तासों टूटी क्यों बने जाके जी बनाओ सलल निवास जैसे मीर की ना कटे रुच सलल निवास जैसे मीर की ना कटे रुच दीपक प्रकाश कटे प्रीत ना पतंग की उस सुभास जैसे त्रिपत ना मध्यप को उड़ते आकाश आस कटे ना विहंग की कटाकन को

गुरु अर्जुन देव पातशाह भी उपमा कर दिए हूं। पाट जिसका नाम मथुरा है, आप कहिंदा है जपियो जिन अर्जुन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ न आए। जो भी प्यार नाल मन करके गुरु अर्जुन देव पातशाह दा नाम जपेगा, जो एक वरा मन करके प्यार नाल आखेगा धन गुरु अर्जुन देव, सारे प्यार नाल जपो धन गुरु अर्जुन देव। जपियो जिन अर्जुन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ न आए। ओ फिर कदे भी गर्भ जूनिया विच नहीं पवेगा, 84 लाख त्रिगट जूनिया तो मुक्त हो जाएगा। जब लो नहीं भाग लिलार उदे, तब लो परम ते फिरते बोलतायो। मथुरा कहिंदा है पट के जब तक साडे भाग नहीं समझागे, असी संसार विच विचर रहे सन, लेकिन कल युग दे विच आके सानू जदों गुरु अर्जुन दे पातशाह दे दर्शन होए, ते सचमुच फिर उस हरी विच और गुरु अर्जुन विच कोई फर्क नहीं है। क्योंकि गुरु अर्जुन दे पातशाह गुरु नानक दे पंजवें स्वरूप, पंजवें गुरु नानक धन गुरु अर्जुन देव महाराज, और जिस गुरु नानक दी उस्तत गावे जनकाद जुगाद जुगेसर हर रस पूरन सर्व कला, गावे सनकाद साध सिदादक मुन जन गावे अचल छला, गावे गुण तोम अटल मंडलोए, भगत पाए रस जानियो कब कल सुजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन मानी। उस गुरु नानक दे गुण जदों राजे जनक दा दरबार लगिया सी, और उस दरबार विच वड्डे वड्डे रिखी महापुरख तपस्वी जोगी आके राजे जनक दे चरणा दी धूड़ लै रहे सन। क्योंकि भाई गुरदास जी कहिंदे ने भगत वड्डा राजा जनक है गुरमुख माया विच उदासी। राजा जनक जिसने बड़ी तपस्या की, और भगत वड्डा क्यों गिनिया गया है, क्योंकि राजे जनक ने राज विच रह के अपने आप नूं माया तो निर्लेप रखे। साथ संगत बोलो श्री। ते भाई गुरदास जी कहिंदे इस वास्ते राजा जनक वड्डा है। ते एक वरा दा जिक्र राजा जनक देव लोक नूं गया, देवते भी लोचते हैं कि कोई जपन वाला साडी पुरियां विच चरण पावे। जिस वेले राजे जनक नूं देव लै के देवते लै के अपनी पुरियां विच जा रहे सन, ते रस्ते विच बड़े रोण दी कुरलाउण दी आवाज आई। राजे जनक ने पुछया कौन रो रहे हैं, तां देवतियां ने दस्या महाराज ए नरक हैं जिथे पए हुए जीव अपने कर्मां दे अनुसार भोग भोगदे हैं, क्योंकि इन्हां जीआं ने जाके संसार ते नाम नहीं जपिया, भगती नहीं कीती। इस वास्ते भगती ना करन करके इन्हां ने अपना मनुखा जन्म जिहड़ा हीरे लालां तों भी महंगा सी, जिहड़ा स्वास हीरे लालां तों भी महंगे सन, इन्हां ने मिट्टी विच रोल दित्ते। ताई आखिया बंदगी ना कीती आ हीरा जन्म पाके, जे तेनू मनुखा जन्म वाहिगुरु ने दिता है और तू बंदगी नहीं कीती, तां तू अपने मनुखा जन्म नू कौडियां दे बदले वेच छड्डिया, उस स्वासां नू कौडियां दे बदले वेच छड्डिया। ताई आखिया